आई। क्यों तत्तै अवगतै पावै गुरमुख लगै प्यारो, आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई, पूरे गुरते साच कमावै गत मित सब दे पाई। आद कहो बिस्माद विचार कथिया ले सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले कट कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई, आप मेट निराल मोहवै अंतर साच योगी कहिए सोई। अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचय परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाने हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाण अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाने सर्व दया, नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया। साचो

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाणै जाणाई नानक हौं मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमै ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पारो तारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे।

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, ता की कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कमन आधारो। बोले खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरिया, एत उत एको जाने। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे। त्रै सत अंगल वाई अवधू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोले तत् बिरोले, चीने लख अपारो। त्रै गुण मेटे शब्द वसाए, ता मन चूके अहंकारो। अंतर बाहर एको जाने, ता हर नाम लगे प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवधू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवधू, हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित असर रही है, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल ना ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तव नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अप्यो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक पूजे को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवधू, ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले, ता निकर वासा एहो मन पाए। आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हो मैं विचों खोवै, तव नानक सहि समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रि पवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कैठै रहता। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण पेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा देह ना होती अवधू, तव मन सुन रह बैरागी।
नाब कमल अस्तंभ ना हो तो ता निज घर बसतो पवन अनुरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकलीन रहतौ शब्द सोसार। गौन गगन जब तबै ना होतौ त्रिभवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण पेख असरूप सो एको एको शब्द विडाणी। साच बिना सूचा को नाही नानक कथ कहानी। कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई। हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरिया दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत् विचारै हम मैं शब्द जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सचे रहे समाए। नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उर तारे। नानक बिन नामै जोग कदे ना होवै देखो हृदय विचारे। गुरमुख साच शब्द विचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजै विरला बूजै कोए गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक को जाणै। बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार नानक बिन गुरमुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता हम मैं मार गुरमुख साच रखिया और तार। गुरमुख जग जीता जमकाल मार बेदार गुरमुख दर गै नाया वैहार। गुरमुख मेल मिलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै। शब्द का

अभ्यागत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदरे कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, कर्मी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जाय आपे नजर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजियानो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजियानो, पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चा शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीज

तुद जेवड़ दाता नाहे किस आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हम जाई है रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरख खटिया पाओ पावे आवो पावे जाओ शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए तुर्क मंत्र कन

जोगी गिर ही जटा बिपूत, आगे पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक कल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पढ़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथै को जाए। करनी बाजाओ पिस न पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई। तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार। जिथे किथे सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ। चीरी आई टिल न काऊ, एथे जाने सो जाय सियाने। होर फकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए। करनी बाजो तरे न कोए, सचो सच वखाने कोए। नानक अगे पुछ न होए, पौड़ी हर का मंदिर आखिए। काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी, गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया। ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी। ना सत पढ़िया देश फिरै, ना

ना सत हस्ती बद्धे संगल, ना सत गाई काओ चरै। जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनु देत सियाए मिलै। नानक तां को मिलै वडाई, जिस कट पीतर शब्द रवै। सब कट मेरे हौ सब ना अंदर, जिसै खुवाई तिस कौन कहै। जिसै दिखाला वट।

थम अहनस अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुरशब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवै सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माणै सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पवसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई भीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसै बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवै घर आया अजय सो रोवै भिखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवै। पांडव पए मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवै शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवै राजे कन पढ़ाए कर कर मांगे भिखिया जाए। रोवै किरपन संचय तन जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश

करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। महला पहला, नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल। मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत्या चेत है चिंता बद्दा जाए। नदर करे जे अपनी ता आपे लय मिलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता। सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता। आपे मेल मिलाया नू आपे दे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। वेल पिंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंभ चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई तागा सीवै। इउं पतपाटी सिवती सीपै नानक जीवत जीवै। हुए पुराना कपड़ पाटै सुई तागा गंडै। माहो पख किहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै। सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै। नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला, सच की काती सच सब सार। काड़ तो तिसकी अप्रयापार। सबदे सान रखाई लाए गुण की थे कै विच समाए। तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख। होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला। कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार। गर्भना की जय नानका मत सिर आवे पार। पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले। सच ते आयन से सचे जनहार खर्च तन पल्ले। भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चले। रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भले। आपे मेल मिलाईंदा आपे दे वड़ियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा। आसा अंदर सब को कोई निराशा होए। नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा। ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए। क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार। नि चले हो तन सास सासिया राधे निर्मल सोए जानो। अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहया सरबत नानक बल जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा। ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाणा। सच कमाणै सचो पाईऐ कूड़ै कूड़ा माणा। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला। साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवियै सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवियै जित सेवै दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन। आपे ही उपदेशदा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है सच्ची वड़े आई। वाह वाह सच्चे पातशाह।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंद बिनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हाँ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस पोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवाण तेण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिनु ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहार जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै
ਹਾਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की। जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है। सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

मेरी दिवस रैंतरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी हम कुकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई तेरे द्वारा तुन सहज की माथे मेरे दगाई दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे पग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाई कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वो बस समार कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जन पाया थिरता का सोहाग जेह मुख बेद गायत्री बिकसै जेह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्रह्मन बिसर करै जा कह पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कहै काहे मेरे बामन हर ना कहै राम ना बोले पांडे दोजक परै रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उधर भरै चौदस अमावस रच रच मांगै कर दीपक लै कूपरै तू ब्राह्मण मैं कासिक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बनै रा हमरे राम नाम कहे उबरे बेद भरोसे पांडे डूमरै तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया एह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरलै जानी रहाओ पावर एक पोहप रस बीदा बारह ले उर तरिया सोरे मदे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया कह कबीर हौ ताका सेवक जने हो बिरवा देखिया मुंद्रा मोहन दया कर चो

68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पितर नाओगो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध सुन।

चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन में लाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तउ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नहाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तउ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगलाय और सुख मना, तीन बसाय कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे शब्दा नाहद बाणी। तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी। ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहै सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रहै, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रहै ना यलिया पाखै, पांचो इंद्री बस कर रखै। गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म ना जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ट करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलु अंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख सा जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सदगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कन हारे। साकत कौ अमृत बहु सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब है बिगारे। मेरे ठाकर कै दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया। हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ। काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया। हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया। शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया। प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ। वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता। पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता। लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता। राम रसायन

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मन फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देहे।

मेरे मन गुरमुख नाम हर ध्याए, सदा हर चरनी लाग रहा, एक मन एक है पाए रहाओ। ना मैं जात ना पात है, ना मैं थे हो ना थाओ, शब्द भेद भ्रम कटिया, गुरु नाम दिया समझाए। एहो मन लालच करदा फिर लालच लागा जाए, धंधे कूड व्यापिया जंपर चोटा खाए। नानक सब कुछ आपे आप है।

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरियै दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मैं एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपनी चलता जिस हर राखै तिस कौन मारे जिस करता आप छिड़ाई जियो हवन दिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छिड़ाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखेत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूपयो पाया शल बप्रिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगर समग्री डर ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे मेरे ठाकर केते अगंत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन परात बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवां, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुनि उपर शोहयो, मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत, चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी, बसदा खिमाने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा, इन मैं कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता, नाले हम मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे, ओहा आवै जाई। वर्ण चिहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पणत नानक जब खेल उजारै, तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवां, मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ, नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो, तिस्ते मुख नहीं मोरेओ, सहजानंद रखियो गृह भीतर, उठ उवाहू कौ दौरेओ। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जानेओ, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथै ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हलत पलाता, तन सेवक सफल ओह आया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवां, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिटकई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कत न पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी, होए संत सहाई, पावन पतत किए खन पीतर, मैं मां कथन न जाई। निरपौ पय सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का, रहन दिन सिलिवलाई। मारू महला पंजवां, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ को क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यो जियरा जार सरे रहाओ। जा कै नाम सुने जम छोड़ै, ताकी सर न पाव सरे, काड़ दे स्याल बपरे कहो, ताकी ओ टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है, ता स्यो रंग ना लाव सरे, थोरी बात अल्प सुपने की, बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकर, संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा, जौ प्र पय सहाई। मारू महला पंजवां, अंतरजामी सब जानै, तिस्ते कहां दुलारेओ, हस्त पाव चरेखन पीतर, अग्न संग लै जा रहे हो। मूड़े तै मंते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बेदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर, टरत ना काहू टारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहो नान

सगल ले शलिया, निर्भव निरंकार दयालिया, जी जंतु सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है, राज कमाए करी जंथैली ता कह संग न चंचल चलिया, एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाब महतारी, सुत मीत भरा ते गुहजी ता कह निकट ना होई खलिया, होए अदूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी, ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया, काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै, साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया, मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ, जाते बिरथा जात ना को, मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साई सुवारिया, सोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है,

पूर्ण अतृप त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटह अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिलै सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत ए है। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होछे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसै बूझ जिंतू किया प्रभ करण कर नेक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

रहाओ। साध संगत गुण उच्चारण हर नाम अमृत पाथ, करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ। मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे, सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया। विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया, आवै जाए पवाई है जोनी रहन किथी थाए पया। मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया। मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई, एको सहाई राम है कीता जिसो होवै, पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है। घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है, आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है। भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा, हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो, गन का हूं गत पाई रहाओ। पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई। मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई, सगल जन्म बिख्यान स्यो खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई। जो संपत अपनी कर मानी छन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर उपर तब सुब तै जाग्यो, कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट में जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस।

नाम न जपई क्यों सुख पावै, बिन नावै क्यों सोहै। मूंड मुडाए जटा सिख बांधी, मोन रहे अभमाना। मनवा डोले दे दिस्तावै, बिन रत आत्म ज्ञाना। अमृत छोड़ महा बिख पीवै, माया का देवाना। कीर्तना मिटई हुक्म न बूझै, पशुआ माहे समाना। हाथ कमंडल कापड़िया, मन तृष्णा उपजी पारी। स्त्री तज कर काम व्यापिया, चित लाया पर नारी। सिख करे कर शब्द ना चीनै, लंपट है बाजारी। अंतर बिख बाहर ने प्राती, ताजम करे खुवारी। सो सन्यासी जो सतगुर सेवै, विचों आप गवाए। शादन भोजन की आस न करे, अचिंत मिलै सो पाए। बकै न बोलै, खिमा तन संग्रह, तामस नाम जलाए। तन गिरही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चित लाए। आस निरास रह सन्यासी, एक स्यों लिव लाए। हर रस पीवै ता सांत आवै, नहीं करताड़ी लाए। मनुआ न डोलै, गुरमुख बूझै। तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमति खोजे। नाम पदार्थ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ। नावरते विचारी, खानी बाणी गगन पताली। जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी। सच नाम उतारी, नाम बिना ने छूट स्नानक। साची तर तू तारी, मारू महला पहला। मात पिता संजोग उपाए, रखत बिंद मिल पिंड करे। अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे। संसार भवजल क्यों तरै, गुरमुख नाम निरंजन पाई। अफरियो पार अफार टरै रहाओ, ते गुण विसर गए अपराधी। मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सवै सिर। अहनिस दात समार करे, चार पदार्थ लै जग जन्मया। शिव शक्ति कर वास धरे, लागी भूख माया मग जो है। मुक्त पदार्थ मोहे खरे, करन पलाव करे नहीं पावै। इत उत ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे। कूड कडंब स्यों प्रीत करे, खावै भोगै सुन सुन देखै। पहर दिखावै काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणै। बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह हमे कर भूले। मेरी मेरी करते शीन खरे, तन तन बिन सहसा सहसा। फिर पछतावै मुख तूर परे, बिरद भया जोबन तन खिसिया। कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर ठरे, चरण रहे कर कंपन लागे। सागत राम नारदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले। किसे ना पावै रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दोख लागे। जब मार समारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेख न मिटई। जन्म मरे का को दोष धरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना। बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पय रस भोगण। फोकट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूल खोयो। सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावै। जा को हर प्रभ नदर करे, ते निर्मल पुरख परंपर पूरे। ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरो गुर बचन समारो। संगत हर जन भाव करे, हर जन गुर प्रधान दुआरै। नानक तिन जन की रेण हरे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू काफी महला पहला, कर दूजा आवो वंजो डुमणी। किती मित्र करे ओ, सातन टोई नाल है, वाडी क्यों तीरे ओ। मेंडा मन रता अपने पिर नाल, हां कोल घुमाई खनिया कीती। हिक पोरी नजर

ना जाना सियाणा सदा साहेब कै रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

मारू महला पंजवां कर चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन अंगन प्रभ जीओ अंतर चांदना आराधना आराधनिका हर हर नाम आराधना त्यागना त्यागन निका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगनिका हर जस गुर ते मांगना जागना जागनिका हर कीर्तन मैं जागना लागना लागनिका गुरचरणी मन लागना एह बिद तिसै प्राप्ते जाके मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश निका जो प्रभ की सरनागना। मारू महला पंजवां आओ जी तू आओ हमारा हर जस सरवन सुनावना रहाओ तुदे आवत मेरा मन तन हरियाओ हर जस तुम संगावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुरमत दुखत जावना दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निध रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन भावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर न सूझे जावना मोहे निर्गुण कहो कोई ना राखै संता संग समावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्ये हर हर रावना। मारू महला पंजवां जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तिवना पहनना रख पत परमेश्वर फिरना गे नहीं थीवना भोगना मन मध्ये हर रस संत संगत मैं लीवना बिन तागे बिन सुई आनी मन हर भगती संग सीवना मात्या हर रस मैं राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना मिलियो ते सर्वनिधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना। मारू महला पंजवां कर अठवां अंजलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविद वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने। घट घट राम हाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओह बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त्या दोत भया उठ चले। ज्यों ज्यों औध विहानियां, पाप करेंदड़ सर पर मुठे। अजरा ईल फड़े फड़ कुठे, दोजग पाए सृजनहार। लेखा मंगे बाणियां, संग न कोई भैया बेबा। माल जोबन धन छोड़ वंजेसा, करण करीम ना जा तो करता। तिल पीड़े जो कहानियां, खुश खुश लैंदा वस्त पराई। वेखै सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर। अगली गल ना जानिया, जम जम मरै मरै फिर जम्मै। बहुत सजाए

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किसी ही कस बक्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना,

गुर पूरे बिन मुक्त ना होई, सच नाम जप लाहा है, पड़े मनमुख पर विद नहीं जाना, नाम ना बूझै भरम भुलाना, लैके वड्डी दिन उगाही, दुरमत का गलफाहा है, सिमरत शास्त्र पड़े पुराना, वाद वखाणे तत ना जाना।

संयोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए, दुख सुख हीते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा है, नीके साचे केवा पारी, ससव दल गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल सब सच्चा ओ महा है, काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै, पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा है, सबको बोले अपन भाण, मनमुख दूजे बोल न जाने, अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है, दुख में जन्मै।

सुन कलाय परंपरधारी आप निरालम अप्रियपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएगा पौन पानी सुन ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाएगा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत तिर पवन सारे सुन्ने

आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीजया पारा, हर साचे सेती वण जवा पारा। सच धन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लह नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सो दना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हौमै माया सूते, अपना करना संभालै।

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है।

सब जग मैं वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। शब्द सलाहै से जन निर्मल, निज कर वासा ताहा हे। सदा भगत तेरी सरनाई, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई। ज्यों तुत पावै त्यों तू राखै, गुरमुख नाम ते आहा हे। सदा सदा तेरे गुण गावां, सच्चे साहिब तेरा मन पावां। नानक साच कह बेनंती, सच देवो सच समाहा हे। मारू महला तीजा, सतगुर सेवन से वडभागी। अंदन साचे नाम लिव लागी, सदा सुखदा तारव्या घट अंतर। सब सचायो महा हे, नजर करे ता गुरु मिलाए। हर का नाम मन वसाए, हर मन वसिया सदा सुखदाता। सबदे मन यो महा हे, कृपा करे ता मेल मिलाए। हम मैं ममता शब्द जलाए, सदा मुक्त रह करंगी। नहीं किसे नाल कहा हे, बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा। बिन शब्द कोई न पावे पारा, जो शब्द राते महा बैरागी। सो सच शब्द लहा हे, दुख सुख करता है तुर लिख पाया। दूजा भाव आ वरताया, गुरमुख होवे सो लिपतो वरतै। मनमुख का क्या विसाहा हे। से मनमुख जो शब्द ना पछाणै, गुर के पै की सार न जाणै। पै बिन क्यों निरपो सच पाईऐ, जम काढ लेगा सहा हे। अफरियो जम मारिया न जाई, गुर कै शब्दे नेड़ न आई। शब्द सुने ता दूरों भागै, मत मारे हर जियो।

आपे करे कर आए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम वसै मन अंतर, नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाणा मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा। गुरमुख तेरा पाणा पावे, सहजे ही सुख सच समावे,

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौ रिजक संभाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनों कृपा करे प्रभु अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे, तिस बिन दूजा अवर ना दिसे, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पे एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगान, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिना दो कर जोरे, प्रे परदेश ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸਾਧਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਸੁਖ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾ, ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗੇ, ਤਉ ਧਨ ਪਿਰ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਅੰਦੀ ਪਿਰ ਚਪਰਸਿਆਨਾ, ਪੰਚ ਤੱਤ ਕਾ ਰਚਨ ਰਚਾਨਾ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕਉ ਤੁਮ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਵਚਨ ਦੇਹੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਸਾ ਹੈ। ਪਿਰ ਕਹਿਆ ਹਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰੋ ਠਾਕਰੋ ਜਿਸ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ, ਜਿਚਰ ਰੱਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊੜ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਜਉ ਪਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਤਨ ਸਾਚੇ, ਤਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸਮਝੈ ਚੰਚਲ ਕਾਚੇ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਿਰ ਹੀ ਸੰਗ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੈ ਕਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਪਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਤਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊੜ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੇਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਚਮੂਏ ਸਾਕਤ, ਨਿਗੁਰੇ ਗਲ ਜਮ ਫਾਸਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ

मार्ग सदगुर पाया, गुर सेवक को बिगना भक्ति हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पुर रहा गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सही ध्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया न जो है माई। सत संतोख दिया गुरपूरै, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी समाए समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाणै, जोगश करे सो आपण भाणै। साधु तूर जाचै जन तेरे, नानक सत कुरबाना है। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, समय वरतै आप निरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्टि उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवे तिस क्या कहियै, गुरमुख नाम पदार्थ लईऐ। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसै बुझाएंदा। हर सो का नगरे हो किया, से उबरे जो सतगुर सरणिया। त्रिहो गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा। अनक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। करुता बीज बीजे नहीं जन जमै, सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काले वसे आप प्रभ किया। निचल एक आप अबनासी, सो निचल जो तिसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बो भाती, फिर सरलै सरल समाएंदा। एक जाचक मंगै दान द्वारै, जा प्रभ पावै ता कृपा धारै। देहो दरस जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकर कितै वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै। कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथै औकट आए बंत है प्राणी, तिथै हर त्याई है सारंग पाणी। जिथै पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथै हर आप छडाएंदा। वड्डा साहेब अगमा थाहा, क्यों मिलिया प्रवे प्रवाहा। काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कहियै, बुरा भला दो संसार सहियै। हौ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहि समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी। अनक रंग करै बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई। गुरमुख प्रगट पाया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय तरी सब तरना। जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिया। दूजी अवर ना जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया, आपे आपे आप प्रभ थिया। आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी।

जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटाय हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी, निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटै कमाते अवगुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जो नंगना। दास दासन को कर लिहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगै, जन्म जन्म का सोया जागै, जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, काटकट रव्या छल स्वामी, परम पीत खोई गुरपुर, एक रव्या सरबंगना। जात कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगे अगा किशमित नहीं पाई है, सो बूझे जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गए काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिसबिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सदबख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत तना। जाचक जाचे तुम्हें अराधे, पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे, एको दान सर्व सो गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठे रंगना। सोले कला संपूर्ण फलिया, अंत कला हुए ठाकर चढ़िया, आनंद विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। मारू सोलहे महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, तू साहिब हां सेव कीता, जियो पिण सब तेरा दीता, करण करावण सब तू है नाही के साड़ा। तुम्हें पठाए ता जग मैं आए, जो तुद पाणा से कर्म कमाए, तुझ ते बाहर किशु ना होवा, ता पी नाही किश काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहा हर जस तेरा पढ़िए, आपे लेखा लेखे आपे, तुम स्यो नाही किश चाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खिलावे त्यों खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही को वे पाड़ा। एक बैसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देह दसंतर, एक ही कौ कास एक ही कौ राजा, इन मैं कहिए क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन सहसारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर की ना आत्म पारा, एक खड़े रसा तलकार,

जग में राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार, नानक नाम ना चेतनी, होए मैले मरै गवार, महला तीजा। दुख लगा बिन सेवे है, हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुख है दाय, आपे देस जाए। नानक ए वै जानी है, सब कित सैर जाए, पौड़ी हर नाम बिना जगत है निरतन, बिना मैं तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया, हौ मैं दुख पाही, बिन कर्मा किशु ना पाई है, जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम्मे मरे, गुर शब्द छुटाही, आप करे किस आखिए, दूजा को नाही, श्लोक महला तीजा। इस जग मैं संती तन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया, इस धन की कीमत कही ना जाए, ए तन पाया भुख लथी, सुख वसिया मन आए, जिन्ना कहो तुर लिखिया, तिन्नी पाया आए, मन मुख जग तो निरतन है, माया नू बिल लाए, अंदन फिरदा सदा रहे, भुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई, न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चितवदा रहे, सहसा कदे ना जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रहे, सच्चे महे समाए, महला तीजा। जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो, जिस बिन अवर ना कोए, खाना शब्द चंगियाईया, जित खादे सदा तृप्त होए, पहनन सिफत सुनाए है, सदा सदा ओ उजला, मैला कदे ना होए, सहजे सच तन खटिया, थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द सिंगार है, जित सदा सदा सुख होए, नानक गुरमुख बुझी है, जिसनो आप विखाले सोए, पौड़ी अंतर जप तप संजमो, गुर शब्दी जप हर हर नाम ते आई है, हमें अज्ञान गवापै, अंदर अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै, जिन चाखिया से निरपो पै, से हर अस्त्रापै, हर कृपा तार पी आया, फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पाईया न जिसनो नजर करे, महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्या सुख पाई है, गुर शब्दी विचार, पौड़ी अंदर राजा तख्त है, आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानी है, अंदर महल असराओ, खरे परख खजाने पाईया न खोटिया नाही था, ओ सब सचो सच वर्तदा, सदा सच ने आओ, अमृत का रस आया, मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही, तू होवे हो नाहे, बुझो ज्ञानी बुझना, एह अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत ना पाई है, अलख वसै सब माहे, सतगुर मिले ता जानी है, जा शब्द वसै मन माहे, आप गया भ्रम पहो गया, जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाई है, उतो मत तराहे, नानक सो हं हंसा जप जापो, त्रिपवन तसै समाहे। महला तीजा। मन मानक जिन परखिया, गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानी है, कल युग विच संसार, आपै नो आप मिल रहया, हमें दुबधा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे, पौ जल विखम संसार, पौड़ी मन मुखे अंदर ना पालनी, मुठे अमते चारे कुंडा भव थके, अंदर तिख तत्ते सिमरत शास्त्र ना सोधनी, मन मुख विगुते बिन गुर किने ना पायो, हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया, हर जप हर गते।

पौड़ी पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया पाणै सतगुर मेलेओन पाणै सच ते आया पाणै जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया। श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वचनी सुखी हूं सुखसार सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार। अगै जात न पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो गई मनमुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है।

बूढ़ोगे परवार सकल स्यों, राम न जपवा भागे रहाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उत्तर सुपारा। जी बदो सो धर्म कर था पाओ, व धर्म कहो कत पाई, आपस को मनवर कर था पाओ, काको कहो कसाई। मन के अंधे आपना बुझाओ, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचहो, जन्मा व्यर्था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सो को पूछो जाई, कह कबीर राम राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पाई, बने बसे क्यों पाई है, जो लो मने मनो न तजै बेकार। जे कर बन समसर किया, ते पूरे संसार सार सुख पाई है, रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया, कहां गुफा मैं बास, मन जीते जग जीतिया, जाते बिख्या ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माहे बिढान, ज्ञान अंजन जे पाया, ते लोइन परवान। कह कबीर अब जानिया, गुरज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटिया, अब मेरा मन कतहू ना जाए। रिद सिद्ध जा को फुरी, तब कहूं स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत क्या कहूं, मैं बोलत ही बड़ लाज। राम जे पाया राम, ते पवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना, दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जे जन पिया, ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बुझे आया, सा ते भया निरास। सब सच नदरी आया, जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया, प्रम गया समुन्द्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप होए जावेंगे। बहुर हम काहे आवेंगे, आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ। जब चुके पंच तात की रचना, ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी, एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तिथि लागे, तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रया लिव सोई। जाओ तुम को दूर करता हो, तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल में, अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद।

मान्या जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण काहे की जित है मन पावन जब जब आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना नैनू नगटू श्रमनू रसपत इंद्री कया नमाना बाबा अब ना बसो एह गाओ करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किरसान वा पा गए लै बांधे ओ जियो दरबारी कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद अन पाओ किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अन पाओ होए वना हम बै सहो हदूर देखे ता पाओ पवे बैरागी अड़े हुक्मै बूझे ता निरपाओ होए वना हम बै हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े पाखंड रता सब लोक बना हम बै तृष्णा पासना छोड़ी बैरागी अड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े जे लोचे सब कोए बना हम बै कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े सहजे पावे सोए वना हम्बे कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको पौजल पार उतार वना हम्बे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे रहाओ हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी सलोक कबीर गगन मामा बाजेओ परयो निशा न काओ खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़े खेत कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चारै सिद्ध मिलके दूले प्रभ की शरण परयो मुक्त पयो चौहू जुग जान्यो जस कीर्त माथे शतर तरयो राजा राम जबत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ शंख चक्र माला तिलक बिराइत देख प्रताप जम डरयो निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो अमरीको दियो अपै पद राज पीखन अद करयो नौ निध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो भगत हेत मारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होए देह धरयो नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे पेट भरे ओ पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारे ओ रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ स्वान सूकर बायस जेवै पटकत चालियो ऊठ आप सकाओ दीर्घ कर जाने और न कौ लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दुजग जात कामी क्रोधी चातरी बाजी गर्बे काम निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमरियो राम कह कबीर चेत नहीं मूर्ख मुक्त गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़सा दत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ कड़िया तहां अप्यो पिया मन आद गुण आद वखाणिया
ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦ੍ਰਿਕਸ ਮਾਨਿਆ ਰਹਾਓ। ਅਰਧ ਕਉ ਅਰਧਿਆ, ਸਰਧ ਕਉ ਸਰਧਿਆ, ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਬਦਤ ਜੈ ਦੇਉ ਜੈ ਦੇਵ ਕਉ ਰਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵਲੀਣ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇ ਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਆਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਹੇਗਾ ਰਹਾਓ। ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੇਗਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ

प्यास ना जाए, अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सद सारिया, गुर कै शब्द मिलिया, मैं प्रीतम हूं सतगुर विट्टों वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर होए विकास, प्रियो प्रियो सच नित चवा राम, प्रियो चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिंगार होवे नित कामण, हर हर नाम ते आवे। दया दान मंगत जन जीजे, मैं प्रीतम देहो मिलाए, अंदर गुर गोपाल ते आई, हम सतगुर विटो घुमाए। हम पाथर गुर नाम, बिख पफजल तारिये राम, गुरदेवो शब्द सुभाए, मैं मूढ़ निस्तारिये राम, हम मूढ़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिले, हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुण तौ शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सतगुर पाए। गुरपाल सहम लोह मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए कायागढ़ सोहया राम, कायागढ़ सोहया मेरा प्रम होया, क्यों सास ग्रास विसारी है, अदृष्टया गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है। सतगुर आग्या सीस भेट दे, जे सतगुर साचे पावै, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावै। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावै जगदीश, ते जन पौ बिखम तरा, बिखम पौ तिन तरिया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाग सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल जो समाणी, हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अग

तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित एक आरा दया तिनका जन्म सफल्यो सब किया करता है जिन गुरबचनी सच पाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे सेवक जन सेवै ते प्रवान जिन सेव्या गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यों तू चलावै प्यारे हों तिवें चला हमरा हाथ किश नाहे जा तू मिलै तहों आए मिला जिनको तू हर मिलै स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तिन उपर जिन गुर का भाणा मन्या भला तू अंतर जामी हर आप ज्यों तू चलावै प्यारे हो तिवें चला तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृटनाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कह तुर लिख माथ जिन कहो तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिन के पाप एक निमख सब लाथे जिन गुर बचनी हर जापिया तन तन तेजन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृटनाथ तू जल थल महियल भरपूर सब उपर साई धनी जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उज्जल मुख हर द्वार ओए हलत पल तो जन पय सुहेले हर राख लिए रखनहार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल थल महियल भरपूर सब उपर साई तणी तू थान थनंतर हर एको एक रविया वन त्रिण त्रिपवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवै हर हर नाम करते असंख गणत हर त्यावै सो धन धन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावै सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान थनंतर हर एको एक रविया तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै जिसकै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिकै हर गुण हृदय टिकै तिसकै जिस अंतर पौ पावनी होई बिन पै कने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तसै लागै जिस तू अपनी कृपा करै तेरी भगत भंडारा संख जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै तुखारी महला चौथा नावन पुरबा बीच गुर सतगुर दर्श पाया दुरमत महल हरी अज्ञान अंधेर गया गुरदर्श पाया ज्ञान गवाया अंतर ज्योत प्रगासी जन्म मरण दुखिन में बिरसे हर पाया प्रभव नासी हर आप करते पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पुरबा बीच गुर सतगुर दर्श पाया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अंदर भगत बनी खिन खिन निमख वेखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेल आया तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोग उदर निर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होवा खबर पई संसार आए त्रैलोवा देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोवा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होवा द्वितीया जमन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे भेट गुर पिछे लंगाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया गुरबचन मार

जगत बोले गुर के नाए लया सब छुटक गया। दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया। सामोही देख दर्शन गुर संत किने आड ना दाम लया। आड दाम किश पया ना बोलक जा गातिया मोहन मुंदन पई। पाई हम करे क्या किस पास मांगे सब भाग सतगुर पिछे पई। जा गातिया उपाव सियाणप कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया। मिल आए नगर महा जना गुर सतगुर उठ गई। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर वटवारे तनका था उथे हो गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। तुखारी संत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुरमन दीना सुन सब तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मुरारा। कीमत कहीं ना जाई ठाकर तेरा महलिया पारा। सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनहो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वन्या दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करै ता पीवा। आस प्यासी पर कह ताई ज्यो चात्रक बूंदे रे। कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहेब साहो अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुखदाता गुरुख जाता सल रंग बने आए। सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जियड़ा बलिहारी जियो पिंड तो दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका। सदगुर ढाग लिया मोहे पापी पड़दा। ढाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते। अवनासी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बेदाते। उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का। नानक दासता कै बलिहारी मिले नाम हर निमका। केदारा महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। आगमा गोचर ना जाई हर लखिया गुर पूरा मिले लिखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पावीए रे। हर हर नाम अमोलक हर पह हर देवै ता नाम ते आवीए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छुड़ावीए रे। हर नाम आराध है से धन जन कहिए तिन मस्तक भाग तुर लिख पावीए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसै ज्यो सुत मिल मात गल लावीए रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे मोको देहो मती जित हर पावीए रे। ज्यो बछरा देख गऊ सुख मानै त्यो नानक हर

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर काय अभिमान जोर तू किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रे रंग देखै, जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवां घर तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ राखो कृपाल रहाओ। अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल। शरण बंदन करना पते, भव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवां कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ। सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान। नानक कहो हर कै रंग रंगो, चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवां, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपालय सगल समालय, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते, घट घट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवां, प्रे की प्रीत प्यारी, मगर मनै मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खुले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवां, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड़, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवां, हर बिन जन्म अकार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। धन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जी होए सहात। केदारा महला पंजवां,
ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰਨਾਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਥ ਰਹਾਓ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁਗਵਤ, ਨਹਿ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਥਿਆ ਗੋਚਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਮਾਥ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾਓ। ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ, ਬਿਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ, ਗਾਠ ਬਾਂਧ ਧਰੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮੈਂ ਖੋਰ, ਭਰਮ ਭੀਤ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕਰ, ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਰਹਾਓ। ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਤੋਹਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਧਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਿਖੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹੋਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਭੈ ਕਲਮਲਹਾਨ ਰਹਾਓ। ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰਜਾਨ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ, ਝੂਠ ਸਰ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ, ਬਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪ ਰਾਖਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਓ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨੂ, ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ਼ਰਮ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਨ ਲਾਗੇ, ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ, ਗੁਣਾ ਅਚਿਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਪੂਰਨ, ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਹਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਦਿਖੈ ਅਗਨ ਨਾ ਜਲੀ, ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ, ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ, ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ, ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ, ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ, ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ, ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬੱਤਰ, ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ, ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ,
हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज करण प्रगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुभागा अंधन हर गुण गाही नानक दास कहे बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्योंदे होरी कत सोभा पावै दर्श बिहुना साध जानो खिन टिक न आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरसक बैरागी नाम लिव लागी कतो ना जाए नखेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया कट कट पुर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना तेरा जानु एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ राज गुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया तीर्थ बर्त नेम सो संजम सदा रह निकामा तृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदिर दीपक प्रगासिया अंधकार तह नासा निरपौ पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बनजिया का सीतांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची वस्त के भार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दह दस आप चलावै निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संतहो निभी खेप हमारी री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संतो सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी काम करो

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदा नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

नाम बिना सब दुनिया शार, अचर जो तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंद को अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता।

अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवीय तित बिगरस काज रहाओ। ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया। पैरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए रहाओ। जोग पेख सन्यास पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए। तपी तपी सर मन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए। चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए। सब मिले को एक बखाना, तव किस्ते कहो दुराए। अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए। जन नानक तन कह बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए। पैरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै। है निकट यार भेद ना पाया, बिन सतगुर सा मोही माया। नेड़ै नेड़ै सब को कह, गुरमुख भेद बिरला कोल है रहाओ। निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर भिरै मिथ्या कर खाए। पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया। निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोह मूठा है मूड़। अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट। अंतर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवै ना जावै कोए। पैरो महला पंजवा, जिस तू राख तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसार। कोट पाव चितवत है प्राणी, सो होवे जे करै चोज विडाणी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरा दरबार रहाओ। जिन सेवया निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक प्राता। जो तू करै सोई फन होए, मारे ना राखै दूजा कोए। क्या तू सोचे।

कर्तार जैसे ऊपर नजर करे करतार ते जन के सब का सवार तिसका राखा को सोए जन नानक पढ़ ना सके कोए पैरो महला पंजवा तौकड़िया जे होवे बाहर तौकड़िया जे विसरै नर हर तौकड़िया जे दूजा पाए क्या कड़िया जा रहा समाए माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ तौकड़िया जे दूजा करता तौकड़िया जे अन्याय को मरता तौकड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किश होए तिंगाने तौ कड़िया जे भूल रजाने गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरों महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गम नहारी जील बिना कैसे बजर बाब नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरे कैसे राजमंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कथनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस यानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत रोग का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कत ना जावे पार ब्रह्म जिसकी दया बहा पकड़ रोगों कढ़ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख पंज चीत आवे ता सरदा पूरी चीत आवे ता कबे ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता स्था निहाल चीत आवे ता सद धनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणे चीत आवे ता चुकी काणे चीत आवे ता सहज कर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी पाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवे सुहेले गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोबा मेरी सब जुगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सब ना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठसठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुने चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर पय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट पय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲ ਕੇ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਸ਼ਨੈ ਸ਼ਰਮਾਵੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਵਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰੈ। ਰਾਹ ਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਓ, ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਮੰਤ ਆਵੈ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਆਪ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਤਾਰ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਓ, ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ। ਸੇਜੰਦਰ ਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਓ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਇਹੋ ਤਤ ਸਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਜਾਪ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਾਥ। ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦੀ ਸਾਥ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਆਵੈ ਕਾਮੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਮਿਆ ਮੋਲਾ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਚਲ ਤਨੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮੈਂ ਬਨੀ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੋ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹੋ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਾਓ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਆਓ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਮ ਲੈ ਤੋ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਉ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਉ

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तू बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा, तव प्रसाद रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे, पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार, ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम, ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ, जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे, प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग, देन दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार, जा का हुक्म ना मिटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन मरण फिर सोग ना होए, बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना में आधार रहाओ, त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताही का होए, गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानके आया सो प्रवान, पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी भवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम, दान दैत निंद कौ जाम, संत संग करे जो बाद, तिन निंदे नाही के साध रहाओ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लए दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है भगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जम ते राखे दे कर हाथ निर्मल सोभा।

नाव मेरे बंध पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौ नद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बीचार, चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे सेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरव ना पाती पूजव ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजव सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना तरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आबना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की

मेरा कर कर्म रहे, निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान, रहाओ मूल द्वारा बंदिया बंद, रवि ऊपर गह राख्या चंद, पश्चिम द्वारा सूरज तपै, मेर डंड सिर ऊपर बसै, पश्चिम द्वारे की सिली ओड़, ते सिली ऊपर खिड़की और, खिड़की ऊपर दसवां द्वार, कह कबीर ता का अंत ना पार, सो मुल्ला जो मन स्यों लरै, गुरु उपदेश काल स्यों जुरै, काल पुरखा मरदै मान।

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबोलंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

रहाओ पंखी मृग माया मैराते साक्रमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राए जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम ब्रता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जरद रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हमसरा पिखारी देव जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़ बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर वाडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमा वासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबोध कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म यगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत स्मरण की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कह कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम द्रुगम गढ़ रचियो बास जामै जोत करे प्रगास बिजली चमकै होए आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागै जरा मरण छूटै परम भागै रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हमै गावन गावै गीत अनहद शब्द होत चुनकार जेह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगमै गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावै को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभ्यंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंस सो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम। टारी न टरे आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचाओ तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चिराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थरे। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर परे पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पाद एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहू स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूंपे आर ना पावै। पंत नाम देव एक नाम निस्तार है, जे गुरमिलै ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो कर दूजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहि सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसे ती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखै जाए, मार्ग छोड़िया मार्ग पाए। मूलों पूला आवै जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करै सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो करमा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एहो बिचार, इन बित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी।
पूत प्रहलाद कया नहीं माने तिन तौ और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औद कनेरी। गिरताल जल ज्वाला पह राखे ओ राजा राम माया फेरी। काढ़ खड़ग काल पह कोप्यो मोहे बताओ जो तुहे राख। पीत पितांबर त्रिपवन तनी थंब माहे हर पाख। हर नाकसो जिन नखे बिदारियो सुर नर किए सनाथा। कह नाम देव हम नर हर त्यावै राम अप है पददाता। सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे कमा। नामा सुल्तान ने बांधला देखो तेरा हर बीठला। रहाओ बिस्मिल गऊ देहो जी आए नातर गर्दन मार उठाए। बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोए। मेरा किया कछु ना होए कर है राम होए है सोए। बादशाहो चढ़े अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार। रुदन करे ना मैं की माए छोड़ राम की ना पजा खुदाए। ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। पिंड पड़े तो हर गुण गाए करे गजेंद सुंड की चोट। ना माय उबरे हर की ओट काजी मुल्ला करे सलाम इन हिंदू मेरा मलिया मान। बादशाह बेनती सुने हो नामे सर पर सुना ले हो। माल ले हो तो दोजक परो तीन छोड़ दुनिया को परो। पावो बेड़ी हाथों तालो नामा गावे गुण गोपाल। गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह। सात कड़ी जा बीती सुनी अजो ना आयो त्रिपवन तनी। पाखंतन बाज बजाएला गर चढ़े गोविंद आएला। अपने भगत पर की प्रतपाल गरड़ चढ़े आए गोपाल। कह ता तरन एक ओडी करो कह ता लेकर ऊपर तरो। कह ता मुई गऊ देव जी आए सब कोई देखे पति आए। नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दुहाई बछरा मेल। दूधे दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी। बादशाह महल में जाए औकट की कट लगी आए। काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए। नामा कहे सुनो बादशाह एहो किश पतिया मुझे दिखाए। इस पतिया कह परवान साच सील चलो सुल्तान। नाम देओ सब रया समाए मिल हिंदू सब नामे पै जाए। जो अब की बार ना जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए। नामे की कीर्त रही संसार भगत जनाले उधरिया पार। सगल कलेश निंदक पया खेद नामे नारायण नाही भेद। कर दूजा जो गुरदेवता मिले मुरार। जो गुरदेवता उतरै पार। जो गुरदेवता बैकुंठ तरै। जो गुरदेवता जीवत मरै। सत सत सत सत सत गुरदेव झूठ झूठ झूठ झूठ आन सब सेव। रहाओ जो गुरदेवता नाम दृढ़ावै जो गुरदेव ना दे दस्तावै। जो गुरदेव

सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभरे हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट, सब कही ना जाए। घट काटो घट काटो रया समाए। जाके भगत आनंद मैं, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभरे हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट, साध संगत त्यों मैं छूट। जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरह पीर। तुम दाते प्रभ देन हार, निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त, भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन या गाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख परम पर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवां, तुम बड़दा ते दे रहे, जी प्राण मैं रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू कर गत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत, या वै नाही कशुरीत। मन मैं राखो आसेक, नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम परवीन, अंत ना पावे जलै मीन। अगम अगम ऊचे ते ऊच, हम थोरे तो बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेवया सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवां, तिस तू सेव जिन तू किया, तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे, तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग होए जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवां, जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लहै। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश, कटकट जिसका है प्रगास। जे सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म कर तूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, संत सभा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान। जिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवां, मन तन भीतर लागी प्यास। गुरदयाल पूरी मेरी आस, किले विख काटे साध संग। नाम जपयो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना। चरण कमल हृदय और तारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करन, मोहया नाथ प्रभ तेरी शरण।
ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲੇਹ ਨਿਸਤਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਦੇਵ।

अंतर्यामी प्रभ दयाल अपने दास को नजर निहाल कर कृपा मोह देहो दान जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां राम रंग सब गए पाप राम जप तो कछ नहीं संताप गोविंद जप तो समटे अंधेर हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारा राम रंग संत जना स्यों सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जह गोविंद भगत सो धन देस हर भगतहीन उदयान थान गुरप्रसाद घट घट पछान हर कीर्तन रस भोग रंग मन पाप करत तू सदा संग निगट पेख प्रभ करण हार ई तूत प्रभ कार्य सार चरण कमल सो लगो ध्यान कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की बांछो धूर जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए गुरपुरे की सदा सरनाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजा आप खाहे जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप अखंड पूर्ण जाको प्रताप गुण गोबिंद नित रसन गाए नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम। सार उत सुहावी जित हर चित आवै फिर सतगुर दी साहिब लांती सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पह बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रव रहया गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नव निध एह कर्म प्राप्त जिस नाम देह प्रभ जप जप जीवै तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया प्रभ मिले चिरी विशुनिया तुम रवो गोविंद रमन योग जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नजर निहालिया अपना दास आप संभालिया से सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवा किलबिख बिनसे गाए गुना आन दिन उपजी सहित होना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होवा साध तूर नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप गुरे अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाम
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

गुर पूछ तुम करो विचार, जै देखो तै सरंग पाण, क्या हो आखा जा कछु नाहे, जात पात सब तेरे नाहे। काहे माल दर्ब देख गर्भ जाहे, चलती बार तेरो कछु नाहे। पंच मार चित रखो थाए, जोग जुत की अह पाए। हम मैं पैखड़ तेरे मने माहे, हर ना चेतै मूड़े मुक्त जाहे। मत हर विसरिया जम वस पाहे, अंत काल मूड़े चोट खाए। गुर शब्द विचारै आप जाए, साच जोग मन वसै आए। जिन जियो पिंड दिता तिस चेतै नाहे, मड़ी मसाणी मूड़े जोग नाहे। गुरु नानक बोलै भली बाण, तुम हो सुजाके लियो पछाण। बसंत महला पहला, दुबदा दुरमत अदली कार। मनमुख परमै मंज गुबार, मन अंदला अंदली मत लागै। गुर करणी बिन भरम ना पागै रहाओ। मनमुख अंदले गुरमत ना पाई, पशु भय मान न जाई। लख चौरासी जन तो पाए, मेरे ठाकर पाणे सिरज समाए। सगली भूलै नहीं शब्दाचार, सो समझै जिस गुर करतार। गुर के चाकर ठाकर पाणे, बख्श लिए नाहीं जमकाने। जिनकै हृदय को पाया, आपे मिले भ्रम चुकाया। बेमोहताज बेअंत अपारा, सच भतीजै करणै हारा। नानक भूले गुर समझावै, एक दिखावै साहि टिकावै। बसंत महला पहला, आपे पवरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल। ऐसी पवरा बासले, तरवर फूले बन हरे रहाओ। आपे कवला कंत आप, आपे रावे शब्द थाप। आपे बछरू गऊ खीर, आपे मंदिर था।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन में गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सशाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विचदै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैन नाम ते आएंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन ते आयन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देख लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੁ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांगो, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, ऊहा तव जाइए जो इहा ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिगल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

सब करना किरत कर लिखी है। कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मनमुख दूजा परम है दूजा लुभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ वालाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख सबाया जमदर बदे मारी है पर मैं परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया याद। महला दूजा कीता क्या साला ही है करे सोए साला है नानके की बाहरा दूजा दाता ना है करता सो साला ही है जिन की तायाकार। दाता सो साला ही है जे सबसे दे आधार नानके आप सदीव है पूरा जिस पंडार वड्डा कर साला ही है अंतना पारावार। पौड़ी हर का नाम निधान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उचरा पास्यो कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखेरु वस होए सतगुरु ते आई नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो प्रवान। चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार ज्योतिष पावे नानका साई पलीकार। जिन्ना चीरी चलना हाथ तिना किश ना है साहिब का फरमान होए उठी कर ले पाहे। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिन्ना को बख्शी है ऐसे ही पोतेदार कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार। जय पंडारी हूं कुण निकले ते की है प्रवान नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान। पौड़ी नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई। बहद्या उठद्या ना विसर साचा सच सोई भगता को नाम आधार है नामे सुखोई। नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाई है एक सना पुजे बोल जे पूरा पूरा कर मिले वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडे तोले सुनियार। तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला आखण औखा सुनने औखा आखना जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात। जे केहो होए ता केहो दिसे जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे औ कट कट काट काटे औ कट कट थाप आखने औखा नानका आपना आखना जापै आख। पौड़ी नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुनया ना उपजे नामे वड़े आई। नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी झूठ ना यानी झूठ ना नाई झूठ ना मीहों वरे है सब थाई झूठ ना तर

जैसा करे कहावे तैसा, ऐसी बनी जरूरत, होवे लिंग चिंग न होवे, ऐसी कही है सूरत, जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुरसब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई, कर चानन बलिया, नानक बख्स में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए, पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा। नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे, पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई, पछता पछताया। जम दर बदे मारी है, नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी, मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नर सुर सरूप, एक ना नाद

ना वेद ना घी रस रस कस ना जान अंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है तन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम ते आए दे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया। नानक भगतां होर चेतना आवई हर नाम समाया श्लोक महला चौथा सतगुर सेवन से वडभागी सचै शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कुटाम मैं सहि समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा। गणतै सेवना हो वई कीता थाए ना पाए शब्द साधना आयो सच न लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वै जाए जे एक विख अगाह भरे ता दस विखा पिछा जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चलै सतगुर पाए आप गवाए सतगुरु नो मिले सहजे रह समाए नानक तिन्ना नाम ना विसरै सच्चे मेल मिलाए। पौड़ी खान मलूक कहाए दे को रहन ना पाई गढ़ मंदिर गच गिरिया किछ साथ ना जाई सोयन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतराई छत्ती अमृत प्रकार करै बो मैल वधाई नानक जो देवै तिस ना जाननी मनमुख दुख पाई। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दे संतर पव थके पेख तारी दूजे पाए ना कदे ना पाए न दुख लागा अत पारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवै माया कै ब्योहारी अंदर कपट उधर भरण कै ताई पाठ पढ़े गवारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हमें विचो मारी। नानक पढ़ना गुणना एक नाव है बुझे को बिचारी महला तीजा नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पया क्या कीजे जिसकी वस्त सोई ले जाएगा रोस किसे स्यों कीजे गुरमुख होवे सो पाणा मन्ने सहजे हर रस पीजे नानक सुखदाता सदा सलायो रसना राम रवीजे। पौड़ी गड़काया सिंगार बहु भांत बनाई रंग परंग कतीफिया पैरै तरमाई लाल सुपेद दुलीचिया बहु सभा बनाई दुख खाना दुख भोगना गरबै गरबाई नानक नाम ना चेत्यो अंतले छडाई। श्लोक महला तीजा सहजे सुख सुती शब्द समाए आपे प्रभ मेल लई गल लाए दुबदा चुकी सह सुभाए अंतर नाम वस्या मन आए से कंठ लाए जे भन कढ़ाए नानक जो तुर मिले से हुणियाण मिलाए। महला तीजा जिनी नाम विसारिया क्या जप जापै होर बिष्टा अंदर कीट से मुठे तंदै चोर नानक नाम ना विसरै झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई हिरदय हर हर चितवै दूजा नहीं कोई रोम रोम हर उचरै खिन खिन हर सोई गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई नानक जीवन दा पुरख ते आया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया बहु कर्म कमावै होर नानक जमपुर बदे मारी है जो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा धरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाम नानक नामे हूणिया तिन तन खावै काओ। पौड़ी नाम सलाहन पाओ कर निज मैली वासा ओए बाहुड़ जो ना आवनी फिर होहे ना बिनासा।
हर सेती रंग रव रहे सब सास गिरासा हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा। ओए किरपा करके मेलिया नू नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा। जिचर यो मन लहरी विच है हमें बहुत हंकार शब्द साधना आवई नाम ना लगे प्यार सेवा थाए न पवई तिसकी खप खप होए खुआर नानक सेवक सोई आखी है जो सिर तरे उतार सतगुर का पाना मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा। सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमें पावे आपे बख्शे मिल ले आपत गवावे मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे नानक गुरप्रसादी सो बुझ सी जिस आप बुझावे पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी हर नाम कदे न चेतई जमकाल सिर मारी पाप बेकार मनूर सब लदे बहु पारी मार्ग बिखम डरावना क्यों तरिये तारी नानक गुर राखे से उबरे हर नाम उतारी। सलोक महला तीजा। विन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जमै वारो वार मोठ गौली पाईयन बहु दूजे पाए विकार एक गुरप्रसादी उबरे तिस जन कौ करह सब नमस्कार नानक अंदर नाम ते आए तू अंतर जित पावे मोख द्वार। महला तीजा। माया मोहे विसारिया सच मरना हर नाम तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम नानक सतगुर सेव सुख पाया जन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेखना होई पुछ न सके कोई हर दर सद ढोई जमकाल मिला दे भेट सेवक नित होई पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई नानक अनहद तुनी दर वज दे मिलिया हर सोई।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाये रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उठ गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिद रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। सात जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कान गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे बिन पिर नींद न पाई। सूर चरै प्रयो देखे नैनी निम निम लागे पाई। फिर भावै प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई। रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलप करे बिल लाई। कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सच्चे गुरपै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई। प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई। गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही। अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच डर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे। हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा। रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई। जेती है तेती तुझ ही ते तुम सर्यवर ना कोई।
जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन्म रै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसै दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची निर्गुण देहे साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रेस्यों प्रीत ना उल्टै कबहू जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई। लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुई ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अखली।

रहाओ सतगुर शब्दी पद जान गुर कह तकी है सच है तान नाम समाल सरूड़ी बाण थै पावे दरले स्पिराण ऊंडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना उची तार निज करवासा तह मगना चल नहार जित कर वसै तू है बिद जाने बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जग दग ब्याशा पै करण पलाव करै बिल लातो बिन गुर नाम ना जापै पल पंकज मैं नाम छिड़ाए जे गुर शब्द सिंपै एक मूर्ख अंधे मुक्त गवार एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मुख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी इंद वरसै तरत सुहावी कट कट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मुए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे बांधा कार कमाए एक शब्द रचै सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जा चर दै समाल रहाओ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्व जी किए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत पारी ऊंडना सांकै पंख पसारी रस चूगै मन मुख गावार फाती छूटै गुण ज्ञान विचार सतगुर सेव टूटै जमकाल हृदय साचा शब्द संभाल गुरमत साची शब्द है सार हर का नाम रखै उरतार से दुख आगै जे

मन हर रंग राता गावै गो, पै पै त्रास भय है निर्मल, गुरमत लाग लगावै गो रहाओ। हर रंग सराता सद बैरागी, हर निकट तिन्ना करे आवै गो, तिनकी पंक मिलै ता जीवा, कर कृपा आप दिवावै गो। दुबदा लोभ लगे है प्राणी, मन कोरे रंग ना आवै गो, फिर उल्ट्यो जन्म होवै गुरबचनी, गुरपुरख मिलै रंग लावै गो। इंद्री दसे दसे फुंतावत, त्रै गुणिया खिन्ना टुकावै गो, सतगुर परचै वसगत आवै, मोख मुक्त सो पावै गो। ओ अंकार एको रव रहया, सब एक समय समावै गो, एको रूप एको बहुरंगी, सब एकत वचन चलावै गो। गुरमुख एको एक पछाता, गुरमुख होए लखावै गो, गुरमुख जाय मिलै निज महली, अनहद शब्द बजावै गो। जी जंत सब सृष्टि उपाई, गुरमुख सो बा पावै गो, बिन गुर भेटे को महल ना पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलावै गो। सतगुर मिलत महा सुख पाया, मत मलीन बिकसावै गो, हर हर कृपा करो जग जीवन, मैं सरदा नाम लगावै गो। नानक गुरु गुरु है सतगुर, मैं सतगुर शरण मिलावै गो। कनाडा महला चौथा, मन गुरमत चाल चलावै गो, ज्यो मैंगल मस्त दीजै तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावै गो रहाओ। चल तो चलै चलै दै दै दिस, गुर राखै हर लिव लावै गो, सतगुर शब्द देर दे अंतर, मुख अमृत नाम चुआवै गो। बिसियर बिसु परे है पूर्ण, गुर गरड़ शब्द मुख पावै गो। माया पयंग तिसने ना आवै, बिख चार चार लिव लावै गो। स्वान लोभ नगर मैं सबला, गुर खिन मैं मार कढ़ावै गो। सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगरी हर गुण गावै गो। पंकज मोह निगरत है प्राणी, गुर निगरत काट कढ़ावै गो। त्राहे त्राहे सरन जन आए, गुर आथी देख नगलावै गो। सुपनंतर संसार सा बाजी खेल खिलावै गो। लाह नाम गुरमत लै चलो, हर दरगह पैंदा जावै गो। हौ मैं करै करावै हौ मैं, पाप कोयले आन जमावै गो। आया काल दुखदाई होए, जो बीजे सो खबलावै गो। संतो राम नाम तन संचो, लै खर्च चले पथ पावै गो। खाए खर्च देवै बहु तेरा, हर दिन दे टुट ना आवै गो। राम नाम तन है हृदय अंतर, तन गुरसरनाई पावै गो। नानक दया दया कर दीनी, दुख दालद भंज समावै गो। कनाडा महला चौथा, मन सतगुर शरण ते आवै गो, लोहा हिरन होवै संग पारस, गुण पारस को होए आवै गो रहाओ। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागै सो फल पावै गो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन ते आवै गो। सतगुर शरण शरण मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर शरण पए से थापे, तिन राखन कौ प्रभ आवै गो। जे को सरसम दै जन उपर, फिर उल्टो तसै लगावै गो। हर हर हर हर हर सर सेवै, तिन दरगै मान देवावै गो। गुरमत गुरमत गुरमत त्यावै, हर घर मिल मिल मिलावै गो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर परचै नाम ते आवै गो। हर हर रूप हर रूपो होवै, हर जन को पूज कर आवै गो। साक्त नारो सतगुर नहीं किया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर स्वान की संगत, बिख माया करंग लगावै गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम ते आवै गो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख समावै गो। शक्का एक, कानड़ा संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, से उदरे जन राम ते आए।

राम ते आए सफल पाए तन तन ते वडभागिया सतसंग जागे नाम लागे एक स्यों लिव लागिया तज मान मोह विकार साधु लग तरो तिन कै पाए बिनवंत नानक शरण स्वामी वडभाग दर्शन पाए मेरे साधु नित भजै नारायण रसक रसक स्वामी गुण गायण गुण गाए जीवै हरम्यो पीवै जन्म मरना पा गए सतसंग पाईए हरती आई है बहुत दुख ना लागे कर दया दाते पुरख विधाते संत सेव कमायण बिनवंत नानक जन तुर बंछै हर दर्शो सहज समायण सगले जंत भजो गोपालै जब तब संयम पूर्ण कालै नित जपो स्वामी अंतर जामी सफल जन्म सवाया गोविंद गाई है नित त्याई है प्रवान सोई आया जप ताप संजम।

तुम जानो हम व्यर्थ है, कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो, कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरै, जन नानक के प्रभु समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमें मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जगंग नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जान, जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चो जो विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछतान, तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान, जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान, कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे, हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे, शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मने रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावन पार परे, भक्त जना की पैज हर राख, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यो, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यो काज ना कछुऐ, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचै जाचै, सर्वधार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगै, भावनिया सो पाइयै, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइयै, नानक तत तत स्यो मिलियै, हीरे हीर बिधाइयै। कल्याण महला पंजवा,
मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागे, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान। नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत उत दह दिस रवे, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखी है, हर पुरख पत प्रधान। साध संग प्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया नंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। जोग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन बेता की कहां करो, तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे जरो रहाओ। बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा, कै दर्शन परो, काहू पै राज काहू पै सुरगा। कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाई है, साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे रहाओ। नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी। अनाथ दीन आसवंत, नाम स्वामी मनै मंत। तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू, सर्व जुग मैं तुम पछानू। हर मन बसे निस बसरो, गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा, मंत्र जापी है भगवान, गुर पूरे सो प्रसन्न पए, सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध पए, गाए गुण गोपाल, मिर साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुखकाल। कर कृपा प्रभ मेरे आ, करो दिन रहन सेव। नानक दास शरणागति, हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा, प्रभ मेरा अंतर जामी जान, कर कृपा पूर्ण परमेसर, निहचल सच शब्द निशान रहाओ। हर बिन आन ना कोई समर्थ, तेरी आस तेरा मंतान। सर्व घटा के दाते स्वामी, देह सो पहरन खान। सुरत मत चतराई शोभा, रूप रंग तन मान। सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ। साध संग जपन संग, जमकाल तिस ना खावनो। मुक्त जुगत अनक सुख, हर भगत लवै ना लावनो। प्रभ दर्स लुब्ध दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। रामा रम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाओ। काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर, मत संजम काढ़ कढ़ीजै। राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लई जै। नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुई जै। कृपा कृपा कृपा कर प्यारे, गुरसबदी हर रस पीजै। काया नगर नगर है नीको, विच सबदा हर रस की जै। रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा ली जै। सतगुर आगम अगम है ठाकर, पार सागर भगत करी जै। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड़ कंचन करत रीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जिनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिन सिरन की, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जगनहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्ट करो मूर्ख जग कहिया अदक बको तेरी लिवरहिया भूल चूक तेरा दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदा मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदे सोई बिद जाने गुर कै सबदे दर निशाने कारण नाम अंतरगत जाने जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैल उजल सच सोए ऊतम आखना उच्चा होए मनमुख खूल महा बिख खाए गुरमुख होए सोरा चैन आए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीणो नीच बुरो बुरो यार। नी तन कहो तन नाम प्यार एहो तन सार होर बिखिया शार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवै तिसको जयकार तू बख्शै जात पत होए नानक कह कहावै सोए। प्रभाती महला पहला खाया मैल वधाया पैदा कर की हान बक बकवा चलाया बिन ना मैं बिख जान बाबा ऐसा बिखम जाल मनवासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बादे मारी ऐ छूटे सच ऐ नाए जिव आया तिव जाए सी किया लिख लै जाए मन मुख मूल गवाया दरगह मिलै सजाए। जग खोटो सच निर्मलाओ गुर सबदी विचार ते नर विरले जानिया जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरै नीजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थै पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हरख चतराई रह सरंग फुरमाए सकाई पहनन खाना चीत ना पाई साच सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किशना सुखावै रहाओ। जोग बिनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कार निज

साध जन संगत हर कीर्त तरतारी, कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरमुख आवे साध मना रहाओ। गुर उपदेश साच सुख जा कहो, क्या तिस उपमा कही है। लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान ध्यान धन साचो, एक शब्द लिव लावै। निरालंब निरहार निह केवल, निरपौ ताड़ी लावै। सायर सब्त भरे जल निर्मल, उल्टी नाम तरावै। बाहर जातो ठाक रहावै, गुरमुख सहि सुमावै। सो गिरही सो दासो दासी, जिन गुरमुख आप पछानिया। नानक कहे अवर नहीं दूजा, साच शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा, चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमुख विरला कोई बूझै, सबदे रहया समाई। नाम रते सदा सुख पावै, सच रहै लिवलाई। हर हर नाम जपो जन पाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै। अंदन हरस रहया अगाई रहाओ। अन दिन भगत करो दिन राती, इस युग का लाहा पाई। सदा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम चितलाई। सुख सिंगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई। अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवै, सदा हर सेवो पाई। आपे करता जिसनो देवै, तिस वसै मन आई। नानक नाम त्याय सदा तू, सतगुर दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा, निर्गुण यारे को बख्श लै स्वामी। आपे लहो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। सबदे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो बल जाई। तन मन अर्पी तुद आगे रखो, सदा रहा सरनाई रहाओ। अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो देह वड़ियाई। पूरे गुरते पाना जापै, अंदन सहि समाई। तेरे पाणै भगत जे तुद पावै, आपे बख्श मिलाई। तेरे पाणै सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करै सो होवै, करते अवरना करना जाई। नानक नामै जेवड़े अवरना दाता, पूरे गुरते पाई। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हरसा लाया जिन्ना। तिन सलाए हर जाता, विचों परम गया है दूजा। गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा एक सोई। तू जपी तुदै सा लाही, गत मत तुझते होई रहाओ। गुरमुख सा लाहन से साध पायन, मीठा अमृत सार। सदा मीठा कदे ना फीका, गुरसब दी विचार। जिन मीठा लाया सोई जाने, तिस विटो बल जाई। शब्द सलाही सदा सुखदाता, विचों आप गवाई। सतगुर मेरा सदा है दाता, जो इच्छा सो फल पाए। नानक नाम मिलै वड्याई, गुरसब दी सच पाए। प्रभाती महला तीजा, जो तेरी सरनाई हर जियो। तिन तू रखन जोग, तो जेवड़ मैं अवर ना सूजै, ना को हुआ ना होग। हर जियो सदा तेरी सरनाई, ज्यो पावै त्यो रखो मेरे स्वामी। एह तेरी वड्याई रहाओ, जो तेरी सरनाई हर जियो। तिन की करें प्रतपाल, आप कृपा कर रखो हर जियो। पोहे ना सकै जमकाल, तेरी सरनाई सच्ची हर जियो। ना ओ कटे ना जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे। ओ जम्मै तै मर जाए, जो तेरी सरनाई हर जियो। तिन्ना दुख पू किश नाहे, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चै शब्द समाहे। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो। जब लग जी परान गुर

प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जानै कह बूझ लिया गै कहिया, अंतर जामी राम रवाई मैं डर कैसे चाहिए। बेदी अले गोपाल गोसाई मेरा प्रभ रवैया सरबे ठाई रहाओ। मन है हाट मन है पाट मन है पासारी, मन है बस है नाना पेदी परमत है संसारी। गुर कै शब्द हो मन राता दुबदा सहि समाणी, सबो हुक्म हुक्म है आपे निरपौ समत विचारी। जो जन जान भजे पुरखोत्म ताची अवगत बाणी, नामा कह जग जीवन पाया हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ता का अंत न जानिया, सर्व निरंतर राम रया रव ऐसा रूप बखानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बावन बिखू बानै बिखे वास्ते सुख लागला, सर्वे आद परमलाद काहट चंदन पैलै। तुमचे पारस हमचे लोहा संगे कंचन पैला, तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला। प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहाओ। ज्यों प्रगासिया माटी कुंभे ओ आप ही करता बीठल दे ओ। जी का बंधन कर्म बे आपै, जो किश किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ इहो जियो चितवै सो लहै, अमर होए सद आकुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन चंदन मस्तक पाती हृदयंतर कर तलकाती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा देख बैसनो प्राण मुख पागा। कल भगवत बंद च राम क्रूर दिष्ट रता निस्बादंग रहाओ। नित प्रत इशनान श्रीरंग दोय धोती कर्म मुख खीरंग, हृदय श्री संध्यानी पर दर्भ हरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशंग निस जागत निस जागस भगत परवेसंग, पग नाचस चित आकर्मंग एलंपट नाचा धर्मंग। मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखंग रे लंपट कृष्ण अपाखंग। जिन आत्म तत् न चीनिया सा फोगट धर्म अबीनिया। कहो बेणी गुरमुख त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान, बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिनस जह तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे, अंत बार संग तेरा यह एक जात है। बिखिया बिख ज्यों बिसार प्रभ को जस ही ये तार, नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है। जय जावंती महला नावा, रे मन कौन गत होए है तेरी,
ਇਹ ਜਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਅਤ ਲੁਭਾਨ ਮਤ ਨਾਨ ਫੇਰੀ ਰਹਾਓ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈ ਨਿਮਖ ਕੀਨ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰ ਸਿਮਰਤ ਨਹਿ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਜੈ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ ਨਿਸਦਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨੈ ਰੇ ਅਜਾਨ ਕਾਲ ਤਉ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹਿ ਭਾਜ ਰੇ ਰਹਾਓ ਅਸਥਿਰ ਜੋ ਮਾਨਿਓ

अस्थरंग दुर्लभ देह उधर अंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुबंत तोयंग अच्युत गुण अज्ञंग पूर्णंग बहुलो कृपाला गंभीरंग उच्च सर्वज्ञ अपारा प्रत्याप्रंग विश्राम चरणंग अनाथ नाथे नानक शरणंग मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावद अहो जासर खेण गोपाल नानक रोमना छेदयाते बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिस बिखम थान बसंत ऊंच नै समरंत मरण कदांच होवंत आग्या भगवान पुरख नानक कीटी सास्या करखते सबदंग रतंग हितंग मया कीर्तन कली कर्म कृतवा मिटंत तत्रा गत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तार से खंडं कटंत ललना सुद प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्रंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं तर्म लखन नानक जे सो प्रसन्न माधव मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं जोबन बहकरम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक हो भगवान ए नम जन्मंगता मरणं हरखंगता सोगं भोगंगता रोगं ऊचंगता नीचं नाना सोमूचं राजंगता मानं अभमानंगता हीनं परवर्त मार्गं वर्तंत विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्थरं नानक भगवंत भजनासनं कृपंगता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसीद बुद्धा कुशल थानं बस्यांत रखियं त्याग मानं बस्यांत रखियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला नाम दान जा चंत नानक दैन हर गुर गोपाला नह चिंता मात पित प्रात नह चिंता कश लोक कै नह चिंता बंता सुतमीत प्रवृत माया संबंधन है दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपालक है अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं अनित हेतं अहं बंदं परम माया मलनं बेकारं फिरंत जोन अनेक जठरागन नै स्मरंत मलीन बुद्धियं हे गोविंद करत मया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं गिरंत गिर पतत पातालं जलंत दे दीप बै स्वंतर भांता गह तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंगता मरण अनक साधनंग ना सिद्धिया ते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध सवजन कोर दुखियं अनकहत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत अंधकार सिमृत प्रकाशं गुणर मंत अग खंडन हरिद बसंत पै पीत दूत कर्म करत महानिर्मल जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण योगं संत प्रेरणा।

पाशंक्रोत अग्रणी व निरासंग आस पूर्ण निर्तन पयंग तन मंत रोगियंग रोग खंडन भगत्यंग भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन पार ब्रह्म पुरख दा तार नानक गुर सेवा किंग ना लभ्यते अतरंग तरंग तारण निर्तनंग तन नाम नर हर अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव सर्वभू दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर सर्वग पूर्ण पुरख भगवान भगत वच्छल करनामय घट घट बसंत बास देव पार ब्रह्म परमेश्वर जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह विश्रांत नह विश्रांत नारायण नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्मं तव प्रसाद स्मृते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परण पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सृजंत रत्न जन्म चतर चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते दानं पराबूर बेण पुचंते महीपते विपरीत बुद्धियंग मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते बिरथा अनुग्रं गोविंद जस सिमरन।

पीवतंग संतना तृपते सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान पंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन निमृता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार्ग विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटांब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक साह संग खल पंडित कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकर सुकर गर्भ दय काक सर्पन तुल खल चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साह संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन नच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल दुर्लभंग एक भगवान नामे नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग जत कत तत दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोक सर्वत्र रमण गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्यते बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन दुखंग पयंत सुखियंग पह पी पंत निर्भय थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक।

ਸੀਤ ਰੁਪੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਸ ਵਜਨ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੁਖ ਬਿਵਰਜਿਤ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤ ਉਪਦੇਸੰ ਸਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣਕੈ ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨ ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕੇਹਰੈ ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਘਰਖੰ ਵਿਆਪਤੇ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਬਿਘਨੰ ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲ ਬਖਮਲੰ ਪਰਮ ਮੋਹੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਮਦੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤੰ ਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮੰਤ ਨਰਕੈ ਅਨਕ ਉਪਾਵੰ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ ਨਿਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ ਅਰਮੰਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੈ ਤਰਨ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਰਮਣਸ਼ੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਤ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਾਸ ਆਸ ਕਰਨੰ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲੇ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾਚਕੈ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾਂਦੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖਣ ਹੈ ਦੁਰਬਚਨ ਭੇਦ ਭਰਮੰ ਸਾਗਤ ਫਸਨੰਤ ਸੁਰਜਨ ਅਸਥਤੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਪੈ ਖੀਣੰਤ ਨਿਰਭਵੈ ਪੈ ਅਟਵੀਅੰ ਮਹਾਨਗਰ ਵਾਸੰ ਧਰਮ ਲਖਣ ਪ੍ਰਮਯਾ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਚਰਣੰ ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲ ਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਾਨੁਖਿਅੰ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹਨ ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਿਅੰ ਜਪ ਤਪਸੀਲ ਵਿਧਾਰਣ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣ ਤਉ ਭੈ ਬਮੁੰਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ ਬਿਖਯੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਿਅੰ ਕਰੋਤ ਨਿਰਤਿਅੰ ਕਰੋਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ ਅਨਕ ਸਾਸਨ ਤਾੜੰਤ ਜਮ ਦੂਤੈ ਤਵ ਸੰਗੇ ਅਦਮੰ ਨਰੈ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਤ ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰੈ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ ਧਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲਤੇ ਨਚ ਮਿਤਰੰ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦ ਖਾਦਿਅੰ ਅਸਾਜਿੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਵਿਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰ ਹੈ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ ਮਿਤਰੰ ਤਜੰਤ ਸਤਰੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤੀਰਨ ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਬੋ ਬਹੁਗਣ ਪਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣੰ ਮਹਾ ਵਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣ ਵੈਦਿਅੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੋ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਹਰਣ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਖ ਹਰੋ ਹੇ ਸਰਨ ਯੋਗ ਦਿਆਲ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਮਾਇਆ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮਾਏ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧਵੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣੰ ਰਮਣ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਤਰਣੰ ਨਾਨਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਤਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੈ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਭਗਤ ਵਛਲਾ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖਾ ਚੁੱਤੈ ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਰਿਓ ਆਕਾਸੰ ਬੈ ਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੇਸ਼ਟੰ ਜੇਨ ਕਲਾ ਸਸੂਰ ਨਖਿਆਤਰ ਜੋਤਿਅੰ ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣੰ ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਪ੍ਰਤਪਾਲੰ ਨੈਛ ਜੰਤ ਜਠ ਰੋਗਣੈ
तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै साध संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णवै ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खरै बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाद पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरन कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोह खंडन सा संगेण गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भू वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग समंत स्वजन अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रतेश जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरचंत पुरख है कुटंब लीला अनित आसा विख्या बिनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नान करनामय हे जेबे हे रसगे मदर प्रिया तोयं सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात्कारण चरण कमल नह भजंत तरण समान त्रिग जन्मन हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोट सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहंग ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणंग बहु विघ्न करणंग उचरणंग सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतर अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एको अंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणो पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैण पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधवै लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्या स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथंग मान मर्दन हतंग पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण
बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण अरहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन। पत्र पुर जेन चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेन लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यान नानक कोल समूह उदाहरण। सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमन गोविंद नानक लभद्यंग बड़ भागण। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरता बरदै गुरमंत्रण। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणंग बिसरणंग गोविंद जीवणंग हर नाम त्यावण। लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याध्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण। गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण। शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुल समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग। सिमरणंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारणं। सुखैन बैन रत्नं रचनंग कुसुम्बरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहां अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हां मस्तक होवै भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजया सोलै किए सिंगार के अंजन पाजया। जे कर आवै कंत ता सब किश पाई है हर हां कंतै बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसया कंत सावड़ भागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया।
कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुखतरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवागौण जा पूरा पाया हर हाय अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नवनिद बसै जिस सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग तां दर्स समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदो पुरख बिधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै को वाहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे मित का चित अनूप मराम ना जानिए गाहक गुनिया पार सो तत पछानिया चितै चित समाए ता होवै रंग घना हर हां चंचल चोरै मार ता पावै सच तना सुपनै उबी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला खोजो ता के चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया करन ना सुनही नाद करन मुंद कालिया रसना जपै नाम तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरे गोबिंद राय दिनो दिन कटी है पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया है कु ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ तावो दसा अनेक प्रेम प्रभ कारणे पंच सतावै दूत कमन बिद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है सदगुर की नीदात मूल नान खुट्टई खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई अमृत नाम निदान दिता तो सहार नानक सदा अराध कदे ना जाहे मार जिथे जाए भगत सो थान सुहावना सगले होए सुख हर नाम ते आवना जी करण जयकार निंदक मोए पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवी है झूठा रंग खुआर कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गए जानिया कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरण जानई हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानई जिसकी पूजै औद तिसै कौन राखई वैदक अनप्यो पाव कहां लो पाखई एको चेत गवार काज तेरे आवई हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई
मिल मिल खावै संत सगल कौ दीजई, जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे, हर हां हौ बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औख दे आए रास विच आप खलोया, जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया, हर हां दुख रोग सब पाप तंते खिसरिया। चौ बोले महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट, प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम, मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए, जाप तप संज महरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब, मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम ना बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल, जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल, कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार, मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। सलोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम, कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार, कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ, कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए, कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश, कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए, कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत, कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ,
कबीर जय जय हो फिर कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली, पाठक सती गाओ आग लगो तह तौल हारो, जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए। रोबो सागत बापरे, जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है, जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी, पवन वह हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी, मुसमुस लावे हाट, एक कबीरा नाम सहजन कीनी बारे बाट। कबीर सुख ना एह जोग, करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। आराम पदार्थ पाए कै कबीरा, गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू, नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर, जाको ठाकर राम, पंडित राजे पूपति आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए, आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर, पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजर की कोठरी, अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कौ पैस जो निक सजाहे। कबीर यह तन जाएगा, सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यह तन जाएगा, कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार, जो बन फल पाके पोए ग्रह बौर न लगे डार। कबीरा तुही कबीर तू, तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है, तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैर का परे, पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे शेक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार। कबीर हार्ड जर

कबीर बैसनों की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, आराम स्नेही तो मिलै दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

कबीर सूरज चांद कै उदय भई सब देह, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट भई सब खे। जह अन पौत है पह नहीं, जह पौत है हर ना है। कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और। लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर, कबीर चोट सुहेल की, कबीर चोट सुहेली सेल की। लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा, साई ना बैरा होए। जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जा की दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगट है बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता ना हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकहार। कबीर राम है राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे पूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी पूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सोजल

कबीरा हमरा को नहीं हम किस हुके नाहें, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहें। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना कर क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाहकी लेगो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो। जियो पियो बूझो नहीं कट मह जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे। अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे, हर है खांड रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तो है साध प्रम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। टूंडत डोले अंध गत अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अब

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तन लैणा थाप जोत जगतारी, लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइय परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोए न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस बेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन्म थरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत हैं। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तारना तावत हैं। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत हैं। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कहो, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कब होक को उपावे आत्म प्रगास को। बेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए, कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्स पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, सचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवाह कहूं कि जां कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अब नासी आचाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करता।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पणंग तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबसर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुम मली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। पतत उदार

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जाना।

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेहे कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जां कह नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक अपन तरै, और न लेत उधार। ज्यो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जौ सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। माया कारण तावही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे

कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख

जगत पे खारी फिर तो है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण हो वै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह ना

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ, नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उबारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कह

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदियां अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदियां अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आ गया पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु।

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुरसेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

दुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक